सुरत करे को मेरी दर्शना दीजा खोल के वार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखो टल वरसेविया सहज सुभाए, दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए, हुआ सिख संबंधी नूर अरसहो कुरसहो चटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया,

नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तन ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो भान भाने नमो बाद बादे अनंगी अनाम्य समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमात्ते समस्ते बैभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राजराजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धि नमो राजराजेश्वरं परम वृद्धे नमो सहस्त्रपाणि नमो वस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखीय परमीय भोगीय भोगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जोगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह नमो भू भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो स्पन स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता दुर्दर्दं अगं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदि अपेदि अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्तथामं तेरा ज्योर्चाचरीशन जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं आजू हैं आदेश हैं अपेस हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निधान्य नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राय राय नमो साजे नमो साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अभिजिन समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदारिद सिद्धं निवासी चारपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे चल राजे अटल साजे अखल धर्म अला कर्म सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं भोक्ता सर्वं जोक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं

हमरी दुष्ट का भव भाद मोहि बचाव सुखी बसै मोरो परिवार सिख सभ करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिये सब रन को वास संगरिये पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरण त्याऊं जो वरचा हूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिय हूँ जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करी हो रक्षा राख लो मुराखन हारे साहिब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सौ लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सावन सुख दियो सतन को पलमो बंद कियो खटखट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिशांत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखे सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिशान ने खटखट की पटपट की जान जब उद कर करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा जब या कर कर तो कब हूँ तुम में मिलते तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही तेरे निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंबो आदा नीन अनाद संता का मूड उचारत भेदा जाक भेम न पापत भेदा ता कव कर पाहन अनुमानत महामूढ़।

तुमरा लखा न जाय पसारा के मिल सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपांड जे से तजकीनी उत्पुज खान बहुर रचनी नि कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिमरी सृष्ट दिखाए चंप होया जुगाद स्वरूप सुयंप

कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किल सकल दे को हरता दुष्ट दोखियन कोश करता श्री अस्तु जप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काल मन वांछत फल पावे सोई दुख न तसा व्याप्त कोई अड़िल।

संत साजन भए सरसे, पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया।

कहो नानक प्रभ इह जनाई बिन गुर मुकत न पाइए पाई कहो नानक प्रभ इह जनाई।

गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वड़ाई तोए रहाओ। विस्वय चस्या घड़िया पहरा, थित्ती वारी माह होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला, गगन मैं थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहदा शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोए कहो, सहस मूरत नना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध विण, सहस तव गंध विचलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिसदै चानण सब मह चानण होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो, आनंदनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंको, होए जाते तेरै नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडाहे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हरलिव मंडल मंडाहे। कर साधु अंजलि पुन वडाहे, कर डंडौत पुन वडाहे रहाओ। साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडाहे, ज्यों ज्यों चलह चुबह दुख पावह, जम काल सह सिर डंडाहे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडाहे, अविनाशी पुरख पाया परमेसर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाहे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड़ वड़ा है, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनहो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलहो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। औद घटै दिन सरै नारे, मन गुरमिल काज सुवारे रहाओ। एहो संसार बेकार संसे मह, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पी आवै एह रस, अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहज हो, हर गुरते मनह बसेरा, निज घर महल पावहु सुख सहजे, बहर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगै, मोको कर संतन की तूरे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग, श्री राग महला पहला, कर पहला। मोती ता मंदर उसरै, रतनी ता होहे जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगन चंदन, अगर चंदन लीप आवै चाओ। मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवै नाओ, हर बिन जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुर पूछ देखिया, अवर ना ही थाओ रहाओ। धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाओ। मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवै नाओ, सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद आखा आओ। गुप्त प्रगट होए बैसा, लोक राखै पाओ। मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवै नाओ, सुल्तान होवा मेल लस्कर, तख्त राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा, नानका सब वाओ। मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवै नाओ। श्री राग महला पहला। कोट कोटी मेरी आरजा, पवन पीयन अप्याओ, चंद सूरज दोए गुफै ना देखै, सुपने सौण न थाओ। भी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड़ आखा नाओ। साचा निरंकार निज थाए, सुन सुन आखण आखणा, जे भावै करे तमाए रहाओ। गुस्सा कटिया वार वार, पीसण पीसा पाए, अग्गी सेती जालिया, भसम सेती रल जाओ। भी तेरी कीमत ना पवै, हों केवड़ आखा नाओ। पंखी होए कै जे पवा, सह असमानी जाओ। नदरी किसे ना आवो, ना किश पिया ना खाओ। भी तेरी कीमत ना पवै, हौ केवड़ आखा नाओ। नानक कागद लख मणा, पढ़ पढ़ कीचै पाओ। मसु तोट ना आवई, लेखण पौन चलाओ। भी तेरी कीमत ना पवै, हौ केवड़ आखा नाओ। श्री राग महला पहला। लेखै बोलण बोलना, लेखै खाना खाओ। लेखै वाट चलाइया, लेखै सुन वे खाओ। लेखै साह लवाई।

लगा लोबान शब्द ना पीजै साकता दुरमत आवन जान साधु सतगुर जे मिलै ता पाइय गुणी निधान मान रे हो मैं छोड़ कुमान हर गुर सरवर सेव तू पावै दरगै मान रहाओ राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान सब सुख हर रस भोगणै संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेवया सतगुर दिया नाम कुकर कूड़ कमाइय गुरनिंदा पचे पचान भरमै भूला दुख कणो जम मार करै खुलहान मन मुख सुख ना पाइय गुरमुख सुख सुपान ऐथै तंद पटाइय सच लिखत प्रवान हर सज्जन गुर सेवदा गुर करणी परदान नानक नाम न विसरै करम सच्चै निसान श्री राग महला पहला एक तिल प्यारा विसरै रोग वड्डा मन माहे क्यों दरगै पत पाइय जा हरना वसै मन माहे गुर मिलिए सुख पाइय अगन मरै गुण माहे मान रे एनस हर गुण सार जिन खिन पल नाम ना विसरे तीजा

तीजा काल मंजलो सण मस वाणिए कागद वी जण जाओ लिखण वाला जल वलो जिन लिख्या दूजा पाओ नानक पूर्ब कमावना वरना करना जाए महला तीजा होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक विण नावे को थिर नहीं पढ़ पढ़ होए कुआर पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनी कया चुगल का हर की वड्याई वड्डी है पूछया दान देव का श्लोक महला तीजा हों हों करती सब मोई संपो किसे ना नाल दूजे पाए दुख पाया सब जो ही जमकाल नानक गुरमुख उबरे साचा नाम संभाल महला पहला गलियां सी चंगियां चारी बुरियां मनो कसूदा कालियां बाहरों च बाहर चिटवियां रीसा करे तिनाड़ियां जो सेवे दर खड़ियां नाल खसमे रत्तियां माणे सुख जलियां होंदे ताण नितानियां रहे निमानड़ियां नानक जन्म सकार था जे तन के तिन के संग मिला पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जान तू आपे जान वरतदा बताई बताईंदा आपे विच से बाल तू आपे कमल लिपत है सह हथां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराईंदा एक निमक घड़ी कर ख्याल हर तुद्दों बाहर किछ नहीं गुर शब्दी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर घर सोभा महल बुलाई नानक करमी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम बिहोणिया रंग कसुंबा देख ना पुल इसका रंग दिन थोड़िया छोछा इसका मल दूजे लगे पच मोए मूर्ख अंध गवार बिस्टांदर कीट से पए पचे बारो वार नानक नाम रते से रंगले गुर के सह सुभाए भगती रंग न उतरे सहजे रहे समाए पौड़ी सिस्टो पाई सब तुद आपे रिजक संभाया एक वल छल करके खाम दे मूहों कूड़ कसत तिने ढाया तुद आपे पा वैसो करे तुद ओते कम ओए लाया एक ना सच बुझायन तेना तुट भंडार दवाया हर चेत खाए तेना असफल है अचेता हाथ लड़ाया श्लोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाणे माया मोह सुआए दूजे भाई हर नाम बिसारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिनी जियो पिंड दिता तिस कबू न चेते जो देंदा रिजक सभाए जम का फाहा गलो न कटिए फिर आवै जाए मन मुख किछो न सोजे अंधुले पूर्व लिखिया कमाए पूरे भाग सतगुर मिले सुख दाता नाम बसे मन आए सुख माणे सुख पहनना सुखे सुख बिहाए नानक सो नाओ मनो ना विसारिए जित दर सच्चे सोभा पाए महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमति आप पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जीव पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चे शब्द सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संजम मने माए बिन नावे तिरग जीवास गुरमति नाओ पाइए मनमुख मोए विनास ज्यों पावे त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब ना रास सब तुझे पासो मंग दे नित कारे अरदास जिसों दे तिस सब कुछ मिले एक ना दूर है पास तुद वाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगिए मन वेखो को निरजास सब तुदे नौ सलाह दे दर गुरमुखा नौ परगास श्लोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ ऊचा कूकदा माया मोह प्यार अंतर ब्रह्म न चीनी मन मूर्ख गवार दूजे पाए जगत प्रबोध दा ना बूझे विचार विरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार
ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨੀ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਬੂਝੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੇ ਚੂਕੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਆਪੇ ਨੋ ਆਪ ਖਾਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਮੁਕਤ ਹੈ ਹਰ ਜੀਉ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਤਾਏ ਜਿਸ ਹਰ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਈਏ ਹਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਮਨ ਹਟਕੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪੁੱਛੋ ਵੇਦਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਲਏ ਹਰ ਲਾਏ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਬਰਿਆਮ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਏ ਜਨਮ ਸਵਾਰਿਆ ਆਪ ਹੋਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਸਭ ਕੁਲ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ਸੋਹਣ ਸੱਚ ਦੁਆਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿਆ ਮਨਮੁਖ ਮਰੇ ਅੰਕਾਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸਭੋ ਵਰਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਆਪੋ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਬਿਣ ਨਾਵੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਹਲਾ

आप सुने ते आपे वेखे, जिसनों नदर करे सोई जन लेखे, आपे लाए लए सो लागे, गुरमुख सच कमावणिया, जिस आप भुलाए सो किथे हाथ पाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए, जिन सतगुर मिलिया से बढ़ पांगे, पूरे कर्म मिलावणिया, पेड़े तन अंदिन सोते, कंत विसारी अवगण मोटे, आंदिन सदा फिरे बिल लादी, बिन पिर नींद न पावणिया, पेड़े सुखदाता जाता, ओमे मारगुर शब्द पछाता, सीज सुहावी सदा पिर रावै, सच शिंगार बनावणिया, लख चरासी जी उपाए, जिसनों नदर करे तिस गुरु मिलाए, किल विख काट सदा जन निर्मल, दर सच्चे नाम सुहावणिया, लेखा मांगे ता किन दीऐ, सुख नाही फुन दूऐ तीऐ, आपे बख्श लए प्रभ साचा, आपे बख्श मिलावणिया, आप करे तै आप कराए, पूरे गुर के शब्द मिलाए, नानक नाम मिले वड्याई, आपे मेल मिलावणिया, माज महला तीजा, इको आप फिरे प्रसन्ना, गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना, तृष्णा तज सह सुख पाया, एको मन वसावणिया, ओं वारी जियो वारीक स्यों चित लावणिया, गुरमति मन इकत कर आया, सच्चे रंग रगावणिया, रहो ए जग पूला तैं आप भुलाया, एक विसार दूजे लवाया, आन दिन सदा फिरे परम पूला, बिन नावे दुख पावणिया, जो रंग राते कर्म विधाते, गौर सेवा ते जुग चारे जाते, जिसनों आप दे वड्याई, हर के नाम समावणिया, माया मोहर चेते नाही, जम परवदा दुख सहाही, अन्ना वोला किछ नदर नावे, मन मुख पाप पचावणिया, एक रंग राते सो तुद आप लिबलाए, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुखदाता, सब इच्छा आप पुजावणिया, हर जियो तेरी सदा सरणाई, आपे बख्शे दे वड्याई, जमकाल तिस नेड़ नावे, जो हर हर नाम ते आवणिया, आंदिन राते सो हर पाए, मेरा प्रभ मिले आप मिलाए, सदा सदा सच्चे तेरी सरणाई, तू आपे सच बुझावणिया, जिन सच जाता से सच समाणे, हर गुण गावे सच बखाणे, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लावणिया, माज महला तीजा, शब्द मरे सो मुआ जापे, काल न चापे दुख ना संतापे, ज्योति बिच मिल जोत समाणी, सुन मन सच समावणिया, हो वारी जियो वारी, हर के नाए सोभा पावणिया, सतगुर सेव सच चित लाया, गुरमति सहज समावणिया, रहो काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए, दूजे लागी महल न पाए, आन दिन जल्दी फिरे दिन राती, बिन पिर वो दुख पावणिया, देही जात ना आगे जाए, जिथे लेखा मंगिए तिथे छुट्टे सच कमाए, सतगुर सेवन से तनवंते, एथे उथे नाम समावणिया, भै पाए शिंगार बनाए, गुर प्रसादी महल कर पाए, आन दिन सदा रवे दिन राती, मजीठे रंग बनावणिया, सब ना पिर वसे सदा नाले, गुर प्रसादी को नजर निहालें, मेरा प्रवे अत ऊचो ऊचा, कर किरपा आप मिलावणिया, माया मोहो जग सूता, नाम विसार अंत बिगोता, जिस ते सूता सो जगाए, गुरमत सो जी पावणिया, अपियो पिए सो भरम गवाए, गुर प्रसाद मुक्त गत पाए, भगती रता सदा बैरागी, आप मार मिलावणिया, आप पाए धंधे लाए, लख चरासे रिजका आप पड़ाए, नानक नाम त्याए सच राते, जो तिस भावै सो कार कमावणिया, माज महला तीजा, अंदर

अहंकार चौथा, इक्की ओंकार सतगुर प्रसाद। किरत कर्म के विछड़ै कर कृपा मेलो राम, चार कुंट दह दस भ्रम थके आए प्रभ की साम। तेन दुधे ते बाहरी कित न आवे काम, जल बिन साकु मलावती उपजे नाही दाम। हर ना न मिलिए साजने कत पाइये विश्राम, जित कर हर कंत न प्रगटी पढ़ नगर सेक राम। सर्व शिंगाल तंबूल रस सण देही सब काम, प्रभ स्वामी कंत बिहूणिया मी सजन सब जाम। नानकी बेनंतिया कर कृपा दी जय नाम, हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका नेह चल धाम। चेत गोविंद औराधिया होवे नंद कणा, संत जना मिल पाईऐ रसना नाम पणा। जिन पाया प्रभ आपना आए तिसे गणा, एखन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। जल थल मैयल पूरिया रविया विच बना, सो प्रभ चित न आवी कितड़ा दुख गणा। जिनी राविया सो प्रभु तिन्ना भाग मना, अदर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा, बसाख तीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम बिशो। हर साजन पुरख बसार कै लगी माया तो, पुत्र कलतर न संग तना हर अवनासी ओ। पालच पालच सगली मुई झूठे तंदे बो, एक सहार के नाम विन अगे लइए खोए। दई विसार बिगुचना प्रभ ने अवर न कोई, पीतव चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। नानकी प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए। विसाख सुहावा ता लगै जा संत पेटै हर सोए। अड़जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगे सब नवन, हर सज्जन दावण लग्या किसे न देई बन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन, रंग सवे नारायण जेते मन पवन। जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन, जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए धन। अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रवन, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मणन। हर जेठ रंगीला तिस तनी जिसके भाग मथन, असाड़त पंदा तिस लगै हर नाह न जिन्ना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। धोए पाए बगुचिए गल पई सुजम की पास, जेहा बीजे सोलुणे मथे जो लिखियास। रैण बिहानी पछू ताणी उठ चली गई निरास, जिन को साधु भेटिया सो दरगै होए खलास। कर कृपा प्रभु आपणी तेरे दर्शन होए प्यास, प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानकी अरदास। असाड़ सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्रीत, मंत्र रत्ता सच रंग चरण कमल। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार, मंत्र रत्ता सच रंग इको नाम आधार। विख्या

कत्तक हो बे साध संग बिनसे सबे सो मगर माहे सुहंदियां हर प्रसंग बैठड़ियां तिनकी सोभा क्या गणी जे साहेब मेलड़ियां तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहेलड़ियां साजना ते बाहरी से रहने अकेलड़ियां ते दुख न कबहू उतरै से जम कै बस पड़ियां जिन राव्या प्रव्यापना से दिसन नित खड़ियां रतन जवेहल लाल हार कंठ तिना जड़ियां नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़ियां मगर प्रभ आराधना बौड़ न जन मड़ियां।

जाते उपजीता मिली सच्ची पी सुमाहु, कर गैलिनी पार ब्रह्मौर न विछड़ियाहु। बाहर जाऊं लख बेरियां हर सज्जन गामे अगाहु, शरण पई नारायणे नानक दर पई आहु। पोख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे वे परवाहु, माघ मजन संग साधु अतूड़ी करेश नाम, हर का नाम त्याए सुन सवना नु करदान। जन्म कर्म मल उतरै मनते जाए गुमान, काम क्रोध न मोहिया बिनसे लोभ सुवान।

सच्चे मार्ग चल दिया उस करे जहान। अठसर तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। जिसनू देवे दया कर सोई पुरख सुजान। जिन मिलिया प्रभु अपना नानक तिन करवान। भाग सुचे से कांडिये जन पूरा गुर मेहरवान। फलगुण नंद अपार जन हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाए। सेज सुहावी सर्व सुख उन दुखा नाही जाए। इस पुनी बड़ पागनी वर पाया हर राय।

सच खरे सर्व सुखा निध चरण हर भौजल बिखमतरे प्रेम भगत तिन पाईया बिख्या नाहे जरे कूड़ गाए दुबदा नसी पूरन सच परे पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक तरे महादूप दिवस मूरत पले

उद्धम से एक राय प्रभ मिल साधु गुण गाव, दूजी जाय न सूजी किथे कूकण जाव। अज्ञान बनासन तम हरण ऊचे गामे अमाव, वन विछड़िया हर मिलिय नानक हे सुआव।

पहला मलक मुरीदा तथा चंदड़हारा सोइया की धुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद श्लोक मोहला पहला।